दक्षिण शाय चिरिंग टुंडुक तंग ठपागुने फुलकाने सुंगुर रिक्सानाजाज कसता अनुराधा पौधवाल तंग ठपागुने फुलकाने भजन सांचेसला फुलेन।

0: Dagsayin siya ay tatpanang siya di Grim Sanadat, nga siya akashwani lini siya ng tangin. Sa kadang chuto, trigyat siya duk, kasi da akashwani di lini skunla sa Majar Prabhat, disting ni Morning News Sanadat.
1: Akashwani si Samachar Prabhat ke saath, main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा।

0: अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी

0: हुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें

0: प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दिस मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह टू अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football,

फिल्म लोडी क्रिमिनल का सदस्य तिंग ने जसपाल सिंह तंग टोपागु ने सलखने गीत गाता चल फिल्म लो संचसला बोलिन रविंद्र जैन ने सुमखने लुआ यंग श्रीखने नो रविंद्र जैन कौन रंग

दसैँ स्याइँ किस्मत फिल्मेलु सनजत कसदै सिङ्ने यादौँ कि बारात फिल्मेलु आशा भोसले तङ मोहम्मद रफी यस्काने सञ्चसला फुलेन मजरु सुल्तानपुरेर सुमखाने लुवा यङ श्रेखाने नो आर डी बर्मन।

0: Դասանշանի ֆիլմելուրի 20-ից ղեջի ակաշվանի լինի ջենջիկտային սնատոցյուցոտ շուչադու Կասեդա իմեջյուցոտ ճուգնյուս ծուպա FM Gold Daily Degree մա ակաշվանի դիլինի սանաձատ
1: Նմասկար ակաշվանի սամաչար կե սաթ մե Մուկեշ Կումար Բալ शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा

भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: is rapidly moving towards making Census 2027 more transparent, technology-driven and accurate. Chief Minister Yogi Adityanath formally launched the first phase of Census 2027 in the state on Thursday. In continuation of this initiative, a self-enumeration session under Census 2027 was organized on Friday, and many ministers of state government and MPs completed their self-enumeration and marked his participation in the process. This includes Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brijesh Pathak, Ministers of State Narendra Kashyap, Kapil Dev Agarwal and MP from Dumaria Ganj Jagdambika Pal. For the extensive publicity and outreach of Self-Enumeration 2027, the Yogi government will conduct awareness campaigns from the state level down to district and village levels. Instructions have also been issued to establish help desks and assistance centers for the convenience of the citizens. Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah have offered tributes to Maharana Pratap on his birth anniversary. In a social media post, the Defence Minister described Maharana Pratap as a symbol of indomitable valour and unwavering pride, who dedicated his entire life to the defence of the motherland. Mr. Singh said that Pratap's unparalleled courage, valour and sacrifice will forever be etched in golden letters in the annals of Indian history. He added that the struggles of Maharana Pratap for the honour and independence of the motherland will continue to inspire generations to come. National Legal Services Authority will organise the second National Lok Adalat of 2026 across the country today. Talking to Akashwani News Member Secretary Nalsa, Sanjeev Pandey said that the initiative aims to provide amicable settlement of disputes and reduce the burden on courts through participatory and public-centric mechanisms. He said that a wide range of disputes are taken up during the Lok Adalat, including criminal compoundable cases, check dishonor matters and bank recovery disputes. Two new suspected cases of Hanta virus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. The announcements in locations thousands of miles apart will fuel concern about the spread of a virus so far associated with three deaths, though the World Health Organization has repeatedly said the risk of the wider public is low and the virus does not transmit easily. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार. चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना आज से भारत दौरे पर. अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की. और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा. अब समाचार विस्तार से. चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना आज से 15 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे. श्री मैककेना कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. सोमवार को वे भारतीय खाद्य आयातक मंच और एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. मंगलवार को श्री मैककेना वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और CII द्वारा आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री पीयूष गोयल ने 30 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्षों में विकसित देशों के साथ 8 मुक्त व्यापार समझौते FTA किए हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति GDP भारत की तुलना में काफी अधिक है. ग्रेटर नोएडा में ICAI वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंट्स को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि FTA पूरे यूरोप को कवर करते हैं, जिसमें 27 देशों का यूरोपीय संघ और 4 देशों का EFTA शामिल है. उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही चिली के साथ एक FTA करने वाला है, जिससे देश के विकास और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को

0: सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय है। इस अवसर पर भारत में संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन भी उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने कोस्टा रिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति और सरकार को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और जनसेवा में सफलता की कामना की। श्रीलंका के कंके संथुराई और भारत के नागपट्टिनम के बीच चलने वाली एक यात्री नौका शुक्रवार रात इंजन खराब होने के कारण कई घंटों तक समुद्र में फंसी रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नौका दोपहर लगभग 2:30 बजे कंके संथुराई से रवाना हुई थी और उसे लगभग 4 घंटे में नागपट्टिनम पहुंचना था। 144 यात्रियों को ले जा रही ये नौका के इंजन में नागपट्टिनम तट से लगभग 2 समुद्री मील दूर कल्लर के पास खराबी आ गई। भारतीय अधिकारियों और स्थानीय मछुआरों को नौका की के लिए भेजा गया, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बंदरगाह पर वापस लाया गया। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है ताकि वे विरोधी देशों पर निर्भर न रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन ने अमेरिका भारत एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से विकास के साथ स्पष्ट नियम और सुरक्षा जरूरी है। तकनीक का उपयोग खुलेपन, सुरक्षा और आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि एआई क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ रही है और भारत अमेरिका सहयोग से दोनों देशों को वास्तविक फायदे मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान को घेरने की नई कोशिश की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के साथ संघर्ष के बाद ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी देखी जा रही है। ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है और हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बना सकता है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों

0: नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने तथा लेबनान में सरकार की पूर्ण संप्रभुता बहाल करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया में हंता वायरस के दो नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, एक स्पेन में और दूसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर के दूरस्थ द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में। ये मामले एक लग्जरी क्रूज जहाज से शुरू हुए संक्रमण से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक इस वायरस से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है और ये वायरस आसानी से नहीं फैलता। संगठन के अनुसार जहाज पर मिले कुछ मामले हंता वायरस के इंडीज स्ट्रेन से जुड़े हैं, जो इस वायरस का एक ऐसा प्रकार है जो इंसानों के बीच फैल सकता है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के फोंग यू झू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के कोंग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिराट का सामना करेंगे। फुटबॉल में भारत ने कल चीन में लेबनान को 4-0 से हराकर एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारत के लिए प्रतिका बम्मन ने 2, अलवा देवी सिंजाम और जोया ने 1-1 गोल किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना आज से भारत दौरे पर। अमेरिका ने ईरान को हथियार बनाने में सहयोग के आरोप में 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the World News. The headlines. Chile Foreign Minister Francisco Pere Mackenna to commence visit to India today. US imposes sanctions on 10 individuals and companies for aiding Iran's weapons sector. US President Donald Trump announces 3-day ceasefire between Russia and Ukraine. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under 17 Women's Asian Cup quarterfinals for the first time. Chile's Foreign Minister Francisco Pere Mackenna will pay a state visit to India beginning today till 15th of this month. Mr. Mackenna will attend a program in Delhi tomorrow. He will also attend business events organized by Forum of Indian Food Importers and ASSOCHAM on Monday. On Tuesday, he will hold talks with Commerce Minister Piyush Goyal and will also attend a business event hosted by CII and the CII Annual Business Summit 2026. On Wednesday, he will hold talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He will then attend a joint meeting with Indian-Chilean business delegation. Minister of State for External Affairs Pabitra Margarita attended the swearing-in ceremony of the newly elected President of Costa Rica. In a social media post, the minister said that he conveyed greetings from the President, the Prime Minister and the people of the country to the President and Government of Costa Rica and wished them every success in serving the people of Costa Rica. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of the India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें हम करते हैं, आपके एसएमएस पढ़ते हैं, आपके संदेश पढ़ते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और आपके पसंद के गाने सबको सुनवाते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना और लीजिए शुरुआत हो चुकी है। राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अत्विक, समयपुर दिल्ली से इनका संदेश आया है। अतर सिंह जी भी साथ में हैं। इसके अलावा गाड़गी नगर भवतमाल, यवतमाल होगा साहब, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षता लोखंडे हैं हमारे साथ और सब मिलकर गाना सुनना चाहते हैं ये।

ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अनिल मोहन हैं, उषा मोहन हैं, टिल्लू नायक हैं, ये कैथल हरियाणा से अपना संदेश भेज रहे हैं। साथ ही मधु नायक भी हैं इनके साथ, अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिखकर भेजी है। टी डी मल्होत्रा जी हैं, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हैं, ये सब मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। और कालका चंडीगढ़ से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज हैं, इनका संदेश भी हमें मिला है। सुदर्शन मुखी साहब हैं, अनिता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं इनके साथ में। सोनीपत शांति नगर सोनीपत से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा संदेश हमें भेजने के लिए। नरेंद्र शर्मा जी हैं, किरण शर्मा है, नितिन और मयंक शर्मा है, ये कलानौर से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। कलानौर कहाँ पे जी? दिल्ली में, बाहर कहीं, यूपी में, कहाँ से? कलानौर आपने लिखा है तो कलानौर कहाँ पे ये भी हमें लिखकर भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है ना। बोधराज खोरवाल जी हैं, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश आया है, साथ में गीतिका रानी खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश जी भी हैं। भारत भूषण जी हैं, भारत भूषण जी कहां से हमें संदेश भेज रहे हैं? व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। भारत भूषण जी के साथ अंजू श्रीवास्तव भी हैं, दिव्येंदु

भूषण भी है, संस्कृति भी है और पौरुष भी है। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है कदमा जमशेदपुर से, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, और ये गाना सुनना चाहते हैं ये

देखिए जो गाना अभी हमने सुनवाया है ना, इसकी फरमाइश हमें और भी लोगों ने भेजी है, और वो उनका नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, इनका संदेश हमें पहले ही आ चुका था, हमने पढ़ा नहीं, और ये भी ये बाबुल फिल्म का यही गीत जो है वो सुनना चाहते हैं। तो राम कुमार रेवाड़ जी, देखिए आपकी फरमाइश हमने आपके संदेश पढ़ने से पहले पूरी कर दी। राजेश जैन है, बिट्टू जैन है, संजीव जैन है, शुभ चंद्र है, इनका गांव मुल्लांपुर दाखा से आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कौन है, शम्सुल कमर राही है, शाहीन फातिमा है, अदनान खान है, फैजान खान है, अनु खान है, उस्मान अंसारी है, कलीम अंसारी है, और इन्होंने बहुत प्यार से थैंक्स और फूल हमें लिखकर भेजा है। आदाब कहा है भावना जी, आदाब, आदाब आपको भी। गंज डुंडवारा से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश अनेजा जी हैं और इनके साथ बिमला अनेजा भी हैं, चंडीगढ़ से इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत ही प्यारा सा संदेश इनका हमको मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौशल्या देवंगन है, इनके साथ रोशन लाल देवंगन है, हेमलता डिम्पल देवंगन भी हैं, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इनका संदेश हमारे पास आया है। और छत्तीसगढ़ से हमारे पास और भी एक संदेश है, किकिर मेटा बेलाहारी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा जी का भी संदेश हमारे पास आया है। गाना जो पसंद कर रहे हैं सुनने के लिए वो है ये।

बिहार से बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हैं, देखिए सबको एक साथ शामिल कर लेते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू हैं। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी हैं। गोला बाजार बक्सर बिहार से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य हैं। और सारिमपुर बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी हैं। इन सबका संदेश हमारे पास आया है। और भगवती जी हैं पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से, इनका संदेश हमारे पास आया है और ये गाना सुनना चाहते हैं।

सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, इन सबका संदेश हमारे पास आया है अनारकली बाजार से। ये जगराओं से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कबीर रेडियो श्रोता संघ है, डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं और सब मिलकर गाना सुनना चाहते हैं ये।

प्रद्युम्न वर्मा है, खतौली शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका संदेश आया है। समय हो गया है आपकी पसंद का गीत, आज तो नहीं सुना पाएंगे, फिर कभी कोशिश करेंगे कि जरूर शामिल करें आपका संदेश भी और आपकी पसंद का गीत भी सबको सुनवाएं। फिलहाल भावना को दिल का मेल बॉक्स समेटना होगा और चलना होगा, लेकिन 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईओएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य

0: ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Suvendu Adhikari is to take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. The oath-taking ceremony is being held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Governor R.N. Ravi to administer the oath of office and secrecy to the Chief Minister and members of the new cabinet. Prime Minister Narendra Modi has arrived at the venue to attend the ceremony. He is holding a roadshow before reaching Brigade Ground. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, along with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states are also present. The ceremony is being held on the 25th of Boishakh, the birth anniversary of Rabindranath Tagore, giving the event added cultural and symbolic significance. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of 25 Boishakh. In a social media post, the Vice President said that Gurudev Tagore's contributions extended far beyond the realm of literature. Mr. Radhakrishnan described Tagore as a pioneering thinker, artist and educationist, whose works reflected the richness of Indian civilization and the universal values of humanity, leaving an enduring influence on society and generations to come. The Prime Minister said that Tagore was a writer, thinker and poet of extraordinary brilliance. Mr. Modi said Tagore made a mark as an exceptional philosopher, educationist, artist and a timeless voice of India's civilizational soul. The government has appointed Lieutenant General N.S. Rajasubramani as the next Chief of Defence Staff, or CDS. Ministry of Defence said that Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. He will

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत के कोने कोने से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो आज जहां हम जाने वाले हैं वो जगह है हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत कसौल, एक शांत और सुकून भरी जगह, प्रदूषण और तनावग्रस्त संस्कृति से दूर, एकदम शांत सुकून। एक छोटा सा गांव है कसौल, जो मणिकरण के पास है। कसौल को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर हर साल बहुत बड़ी संख्या में इजरायली यात्री आते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये शहर, जिसे भारत का एम्स्टर्डम भी माना जाता है। क्या खूबसूरत है यहाँ पर, क्या खास है, यही तो बात कर रही है आज मैं हूँ आपके साथ भावना।

अगर आप कसौल आ चुके हैं तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट या कहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो सबसे पहले जाते हैं तोश गांव। तोश कसौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्राकृतिक सैर ये लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत घूमते हैं लोग यहाँ पर आकर, खासकर विदेशी टूरिस्ट जो हैं वो। इसके अलावा तीर्थन घाटी कसौल की, ये बहुत मशहूर है, बहुत लोकप्रिय है। ट्राउट मछली पकड़ने के लिए बहुत फेमस है ये। तीर्थन आने वाले लोग जो है ना, ट्राउट मछली पकड़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। इस घाटी को ट्राउट मछली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में शामिल है तीर्थन।

नेचुरल, पैदल घूमना, फोटोग्राफी करना यहाँ की खास अट्रैक्शन कह सकते हैं आप. मतलब यहाँ पर लोग नेचर को पास से महसूस करते हैं, बहुत खूबसूरती से देखते हैं और लगता है कि जैसे कुदरत अपने गले लगा रही है. ऐसी जगह है ये तीर्थन घाटी.

सचमुच कसौल की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने गले लगाती है, अपने पास खींच कर बुलाती है। एक एक यात्री जो यहाँ आता है बस यहाँ का होकर रह जाता है। खूबसूरत पार्वती घाटी, यहाँ पर ट्रैकिंग करना कसौल में बहुत ही अच्छी बात माना जाता है। मतलब यात्री इसको बहुत ही खास बात मानते हैं। जो पार्वती नदी है ना, पार्वती घाटी की, वो यहाँ की निवासियों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो नदी है पार्वती घाटी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से है, और इस नदी के सहारे, इस नदी के किनारे आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़ी सुकून से घूम सकते हैं, नदी के किनारे टहल सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को अपने मन में बसा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। इसके अलावा मणिकरण, ये कसौल से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश की सैर करते हैं ना, वो यहाँ मणिकरण

उत्तराखंड में जरूर आना चाहते हैं और कसौल के तो बिल्कुल पास है ये। तो हिंदू और सिख दोनों धर्मों के अनुयायी जो हैं वो मणिकरण को अपनी प्रार्थनाओं के लिए महत्वपूर्ण जगह मानते हैं। मणिकरण के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, एक तो मणिकरण गुरुद्वारा और दूसरा शिव मंदिर। जो मणिकरण गुरुद्वारा है ना वो भी हिंदू और सिख दोनों ही धर्मों के अनुयायियों के लिए जो है वो खास होता है, मान्यता है इनकी। और मणिकरण के जो प्रमुख आकर्षण हैं उनमें यहाँ पर जो है एक गर्म पानी का झरना है, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं और गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाते हैं और बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो ये प्राकृतिक गर्म झरने होते हैं, वही जो औषधीय गुण है वो इस झरने में भी है। इसके अलावा शिवरात्रि के दौरान मणिकरण के शिव मंदिर में दर्शन करना पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग खास तौर पर शिवरात्रि में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारे में लंगर खाना, यहाँ पे मंदिर जो है उनका भ्रमण करना, यहाँ पे गर्म पानी का जो झरना है उसमें स्नान करना बहुत अच्छा लगता है सभी पर्यटकों को। और खासकर यहाँ पे गुरुद्वारे में और शिव मंदिर में अपने मन की मन्नत मांगना, दुआएं मांगना भी लोग नहीं भूलते।

प्राची सिंह बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ

गाड़ी में हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

मैदान के नाम से ट्रैकिंग का जो है ना वो एक विचार जो है जहन में आता है, जब हम ऐसी जगह जाते हैं जो पहाड़ी एरिया हो तो वहां पर ट्रैकिंग करने का अपना एक अलग सुखद अनुभव होता है ना। तो कसौल में अगर आप इस रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो खीर गंगा की ट्रैकिंग पर विचार कर सकते हैं। कोई भी कसौल की यात्रा की योजना बनाता है तो वो इस ट्रैकिंग को करने का मंसूबा, एक योजना तैयार करके आता है। खीरगंगा गांव ना कसौल में देखने लायक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप खीरगंगा की ट्रैकिंग और इस जगह पर रुककर अपनी यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। खीरगंगा पार्वती घाटी का आखिरी गांव है जहां से आप पिन पार्वती दर्रे से होते हुए अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं और गांव के आसपास आपको

आप कितने भी उदास क्यों ना हो, आप कितने भी जिंदगी से निराश क्यों ना हो, यहाँ पर आने के बाद, कसौल में आने के बाद आपको चांदनी, खुशी, हरियाली, झरने सब कुछ मिलेगा और आपका मन करेगा यहाँ से वापस ना जाएं। नागर गांव जो है वो कसौल के बहुत ही खास जगहों में से एक है। चारों ओर फैले खूबसूरत झरने और शानदार पर्वत श्रृंखला, इसके मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आप कल्पना कीजिए ना कि आप एक ऐसे गांव में हैं जहाँ चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, बीच में छोटा सा एक गांव है जिसमें बहुत सारे झरने हैं, प्राकृतिक खूबसूरती है, तो आपको कैसा लगेगा? एक इमेजिनेशन जो होती है ना इंसान को, वो वहाँ पर पहुँचा देती है। और यहाँ की खास बात है यहाँ का गौरी शंकर मंदिर और नागर के प्रसिद्ध किले का दर्शन करना। ये यादगार अनुभव होता है पर्यटकों का जो यहाँ आते हैं। और इस शहर की ना, नागर शहर की सबसे अनूठी विशेषताएं क्या है कि यहाँ की जो वास्तुकला है वो एकदम अनोखी है। जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के किले में, आप उस वास्तुकला को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। लकड़ी के पत्थर से, मतलब लकड़ी से बनाया हुआ और पत्थर से बनाया हुआ जो संरचनाएं हैं यहाँ पर, वो खास आकर्षित करती हैं। लकड़ी पे जो काम

दिया है और जिस तरह से उकेरी गई है कारीगरी वो बहुत खूबसूरत है। और पत्थर का काम तो लकड़ी के काम से भी ज्यादा खूबसूरत और बारीक दिखाई देता है। मतलब सब कुछ इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि बस मन करता है यहां से आप कहीं न जाएं और इन्हीं बहारों में कहीं खो जाएं।

कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

पर्दा जब आप हटाएंगे कसौल से चालाल गांव के बीच, तो आपको पता चलेगा कि खूबसूरती क्या होती है, प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है। 30 मिनट लगते हैं पैदल पैदल जाने में कसौल से चालाल गांव। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक सा छोटा सा गांव है ये, लेकिन जो रास्ता हम बता रहे हैं ना, वो भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि ये छोटा सा मनमोहक गांव। चालाल में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस मिलेंगे, मैजिक व्यू कैफेज भी मिलेंगे, भोजनालय भी हैं, कैफेज की भरमार है और बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। पता है खास चीज क्या है, चालाल का जो मुख्य आकर्षण है वो आसपास के जंगल में होने वाली 3 से 4 दिन तक की पार्टीज होती हैं। यानी यहां पर लोग आकर जंगलों में समय व्यतीत करते हैं, 3 4 दिन तक वहां पर एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इसीलिए ये जगह खासी मशहूर है कसौल के आसपास। और कसौल से पुलगा यहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। इसे परियों का जंगल भी कहा जाता है। कसौल के पास एकदम शांत एकांत जगह है पुलगा।

0: ऊंचे पहाड़, हरियाली, चाय के बागान, पारंपरिक लकड़ी के घर यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पुलका शांति से भरा हुआ है। यहाँ कुछ ना करना ही सबसे अच्छा काम है। इस जगह की शुद्ध और अद्भुत ऊर्जा में डूबकर मानो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम एकांत शांत स्वर्ग है यहाँ पर। पुलगा में आप सुबह सुबह गांव की सैर कीजिए और यहाँ पर भगवान नारायण के मंदिर हैं, उनके दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भुंतर एक शहर है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में। जो लोग कसौल आते हैं वो भुंतर भी घूमने आते हैं। ये भी बहुत ही सुकून भरा आराम की जगह है। मतलब यहाँ पर अगर आप वीकेंड बिताना चाहते हैं, मतलब अपना सप्ताह बिताना चाहते हैं, जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे, तो वो एक अच्छा मतलब डिसीजन माना जाता है कि यहाँ पर आएं और सैटरडे संडे आराम से बिताएंगे। भुंतर में ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ पर मंदिर हैं देखने लायक बहुत ही। और कुल्लू घाटी से भुंतर जो है ना, वो 10 किलोमीटर के करीब दूर होगा। कसौल आने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अद्भुत दृश्य देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भुंतर में ढाबे और छोटी छोटी दुकानों में जो खाना मिलता है ना लोगों को, वो बहुत पसंद आता है। इसके अलावा मंदिरों के यहाँ पे दर्शन करना जो है वो लोग पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो भी नवविवाहित जुड़े हैं उनके बीच हनीमून पॉइंट भी है ये। मतलब जो नवविवाहित जुड़े हैं वो यहाँ पर अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए आते हैं, अपने जीवन को मुस्कुराहट से भरने के लिए आते हैं।
1: ला ला ला ला ला आहा।

कसौल की पांडोह झील, नीले रंग की ये झील दुनिया भर के अनगिनत फोटोग्राफर्स के लिए एक खास जगह है। पांडोह बांध झील के अधिकांश जल की आपूर्ति करता है और ये जो मंडी कुल्लू राजमार्ग है वहाँ से इस झील से मतलब जो है ये स्थान होकर गुजरता है। पांडोह बांध के लिए एक बेसिन के रूप में काम करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है बिजली उत्पादन और ब्यास नदी का मार्ग बदलना। यहाँ का पानी बहुत साफ है, बहुत निर्मल है, उसमें नीला आकाश ऐसा लगता है कि जैसे उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा हो। अद्भुत तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतना खूबसूरत नीला पानी है, ऐसा जैसे आसमान जो उसमें दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी जगह की फोटोग्राफी जो है वो खास अपने आप हो जाती है। इसलिए यहाँ पर लोग बहुत बहुत इंजॉय करते हैं फोटोग्राफी करना। ये झील जो है नागर किला, ब्यास कुंड, ब्यास नदी, हिडिंबा देवी मंदिर और मणिकरण गुरुद्वारा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के निकट है। मतलब ये सारे जितने भी लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं इसके आसपास ही हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है जाना, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। सेब के बाग, बर्फ से ढके सफेद पहाड़ और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है जाना। जाना जलप्रपात जो है वो जब गिरता है तो घाटियों से गर्जना करते हुए गिरता है। दूर से आप उसकी जो गर्जना है वो सुन सकते हैं, उसकी साउंड सुन सकते हैं पानी के गिरने की। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है ये जाना जलप्रपात। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसकी चढ़ाई जो है बेहद रोमांचक और मनमोहक है। और हरे भरे वातावरण के बीच, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये जो जलप्रपात है, इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो घने देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच से निकलता है। बहुत ही खूबसूरत है ये जलप्रपात, ये गांव, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है। बस अब आपको ये तय करना है कि आपको यहाँ कब आना है।

0: मैं तन्हा थक गया राही चलते चलते, दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से।
1: इसी के साथ अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार। आप बने रहिए आकाशवाणी ARFM गोल्ड के साथ। 12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम होगा, लेकिन इससे पहले समय है समाचारों का।

का सितार लता मंगेशकर तंग शब्बीर कुमार ने आज का अर्जुन फिल्मेलो सनाजात लुरसुमा जातकान अनजान तंग लुयांगस्टिगा जातकान बप्पी लहरी।

डिग्री में स्तिंग चुप्पे का लता मंगेशकर तम किशोर कुमार ने सिलसिला फिल्म लो सनाजात लूर सोमाजात खान जावेद अख्तर तंग लुहंग स्टिगाजात खान शिव हरी।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर।

0: Capitals by 8 wickets in Delhi last night. Chasing a target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 runs by only losing 2 wickets in just 14.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलो हर्ट्स और एफएम मेगाहर्ट्स 101.1 पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए प्रोग्राम।

जय हिंद। फौज भाई, आज के समय के प्रोग्राम में सुनेंगे फिल्मी गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार मिथुन।

लीजिए अब सुनिए गोपी सुनेर और चिन्मय श्रीप्रदा की आवाज़ों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

अभी आपने सुना आर राजकुमार फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे नीलेश मिश्रा और प्रीतम। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में मोहब्बतें फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

फौजी भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में अगला गीत सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में रॉकस्टार फिल्म से। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार ए आर रहमान।

लीजिए अब सुनिए कुणाल गांजावाला की आवाज़ में क्योंकि फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: प्रोग्राम के अंत में सुनिए जावेद बशीर की आवाज़ में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं रजत अरोरा और संगीतकार प्रीतम।
1: इश्क वो बला

0: ngaje akashvani le ne chunjiktain yebe chuzo chiktang sala to se the biggest thing ne akashvani delhi ne school la urdina nasul nisika mite news tang nistang chungai ka dopahar samachar sanachat
1: akashvani ke khabron ke sath main mohammad ammar सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वधरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुविंदु अधिकारी को मगरिब बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम है दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कितानिया, निशित परमानिक और सुधीराम टूडू।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: वजीर आजम ने मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत की हिमायत में कमी की वजह से नई सरकार बनाने में ताखीर हो रही है। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी ने कहा है कि ये गवर्नर का फर्ज है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मदऊ करे। चेन्नई में नामनिगारों से गुफ्तगु करते हुए उन्होंने गवर्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दिल्ली के इशारों पर ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल में ताखीर करके बीजेपी रियासत में AIADMK सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान AMM के सरबराह TTV दीनाकरन ने मांग की है कि उनकी पार्टी के MLA की तरफ से हिमायत का फर्जी खत TVK को दिए जाने के मामले पर गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ AIADMK के अरकान असम्बली पुदुचेरी से चेन्नई पहुंच गए हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपये बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोज़ा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि

0: the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा अब समाचार विस्तार से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया
3: शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष अग्निमित्रा पॉल अशोक कीर्तनिया खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है इस अवसर पर शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि

0: में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी

0: आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रस्तुत है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कसता सेवांग रिंग रिक्जिंतांग ठोपाने सालकने जुंगलो रिक्सनाचा

0: क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Kastanga she thore se degrim ngispes korgun juna degrim ngispes gozok peka pito gochu to ashngi kala daksana nasul. Shnga tangs karma ashngi ka sun la sonam punso yang te singne ta shi paldun tang thapagune salkane japri luri ek sanchala pulin. Shnga tang pedeka film luri shnga tangs karma apchunga ngai kha nga she degrim ngunes korgun. Thore se pito gochu to tuk tangs karma shi kha gamul pes katlon degrim sanchala pulin it degrim nanga sonam nor pele salkane luji gang sanchala pulin. Degrim ekotik chat khan sonam angchuk. Torres Pito Chito took Tans Karma Jipchika, Mark Mikok Tony Fedigrim and Afel Magazine, Sanchila Pulin, Torres Edigrim Pulkan, Sering Concho. Duntans Karma Chungweka, La Darsena, Nasul Tantelcha, Duntan Pedeca, Tille Utsertang, Sering Chorolinski Salcane, Lurik, Sanchila Pulin, Torresani Chito, Gadeca, Jungester, Sanchila Pulin, Gatan Pedeca, Jigme Chondol Tang, Topagunis Alcane, Yultoni Lurik, Sanchila Pulin. Yang aje Torres degree ni space tinggi juga kat sana cutut gudang pedeka sering nurbu tang tu pagun esalkan ejung luri Sanchez Lapulin. Kasih tahu gunin pin ngaji tin degree ni sepatang Torres ni degree mana skor gun ngaji akash wani lene cuncik tangan pito gucutut truk caduk kasih tak akash wani dili ni skun lah Hindi yang testing yang rezina nasul sana cat.
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया

0: सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the chief minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamiraga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government.

dak sang jarang e jing pe sung ska tik rim sana za a de ring dik rim pul kan in pen de shik tol kar yang dik rim ekotik zat kan in pen so na mang chu medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur fm megahertz 101.1 megahertz par hum akashvani ke liye kendra se bol rahe hain. प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम.

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाइयों, अपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल को लक बाई चांस फिल्म से। गीतकार है शंकर एहसान लॉय और संगीतकार है जावेद अख्तर।

फौजी भाइयों के लिए अगला गीत हमने लिया है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, दिल का रिश्ता फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार है नतिम श्रवण।

फौजी भाइयों के लिए अगला गीत हमने लिया है बेगम पाक फिल्म से। कुणाल गंजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गीतकार है समीर और संगीतकार है प्रीतम।

0: Daksani jarangaya tenzin diki salkane luri iksana zaats nga chi Akashvani le ne shunchik tangin peito gu chuzo dun tang skarma jibchu chadu. Kasata Akashvani Srinagar ne urti nga nas tsul tang tapsara sana zaat.
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनशियात मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सरकार नौजवानों की राहत रसानी के लिए वादाबंद, नायब वजीर अला सुरेंद्र चौधरी। और सुवेंदो अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इससे ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के को मंशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मंशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफी तादाद में तलबा ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कलाकमा करना वक्त की अहम जरूरत है।
2: इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई मेरी, ये लड़ाई हम सबकी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज्यादा प्रभावकारी होते हैं।
1: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक कलमकार और फिल्म साज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मंशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर

0: पनीर का यूज इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौतमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि वो और इस पर तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए।
1: मनुष्यत के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में मजालटा के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद राकिब को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी दो ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कठुआ में मुस्कीन नामी मंशियात फरोश को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान डोडा, उधमपुर और दीगर अजला में पुलिस के एहतमाम से मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। कश्मीर सूबे के अनंतनाग और बड़गाम अजला में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान भंग और खशखाश की काश्त को तबाह किया। अवंतीपोरा पुलिस के एहतमाम से पुलवामा जिले के ख्रव इलाके में मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। सोपोर के शराकवारा वागुरा इलाके में भी सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। पुलिस ने अनंतनाग में गुलाम नबी रैना, बड़गाम में नजीर अहमद गनाई और हंदवाड़ा में साहिल मंजूर डार नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार यूटी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई इदारों में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करने के लिए काम कर रही है जिससे नौजवान रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक सरकार ने नौजवानों को मुश्किलात में मुब्तला किया। आज श्रीनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग, जनाना पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमना और आईटीआई बेमना के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लोगों खसूसन नौजवानों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है।
2: 11-12 साल सुनील शर्मा साहब आपकी और पीडीपी की हुकूमत रही और उसमें आपकी जो सरकार भी रही, तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी उनके हाथ में थमा के दे दी है। उन बेरोजगारों पे आपको बात नहीं करते आप। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक जरूरतें हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उनको एक ही मकसद है कि सरकार गिरानी है, सरकार गिरानी है। हमें लोगों ने चुन के भेजा है। कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की, हमारे जो पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज हैं इनमें अच्छे सब्जेक्ट लाए जाएं, अच्छे कोर्सेज लाए जाएं जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और ये बच्चे अपना रोजगार ढूंढ सकें।
1: सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना एतू ने आज कुलगाम जिले में सियाती शोबे की कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने पांचन पथरी में नए तामीरशुदा पैसेंजर शेड के अलावा एक व्यू पॉइंट को भी आवाम के नाम वक्त किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में नई उभरते हुए सियाहती मकामात को तरक्की देने की वादाबंद है और इस सिलसिले में मकामी और दीगर सयाहों के लिए जदीद सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से आज बड़गाम जिले के बदरन मागाम में समनबल नामी 3 रोजा अदबी मेले का आगाज हुआ। कल्चर की मरकजी वजारत के माली इश्तराक से मुनाकिद हुए इस मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशां अंद्राबी ने किया। मेले की इब्तदाई रस्म की सदारत नामवर अदीब प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मासूदी मेहमान एजाजी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर और सरबराह तारिक राथिर भी मौजूद थे। अपने खिताब में डॉक्टर सईद दरखशांद्राबी ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से आम लोगों में अपने तहजीब और तमदन के बारे में बेदारी पैदा होती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथिर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके टाउन से ये मुनाकिद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स हैं, अब क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान में दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
1: मुख्तसर कहानियों और मजमून नवीसी पर मुश्तमिल प्रोग्राम की दूसरी नशस्त की सदारत मारूफ ड्रामा नवीस और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने की। इस नशस्त में कई मुक्तदिर अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के अगराज मकासिद के बारे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
4: इस प्लेटफॉर्म पे फनून लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार शोरा अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीख

0: हैं, और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामला अपने तखलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है उनको, सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला एक तहरीक एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग उनकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये सकाफती और तमद्दनी और अदबी मीरास जो हमारी है ये आगे बढ़ जाती है और ये जिंदा जावेद हो जाती है। ये है इसका मकसद, इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी कोशिश मकसद ही होता है इसके पीछे।
1: तकरीब के दौरान कल्चरल एक्टिविस्ट जीआर हसरत गढ़ा को साल 2024 और हकानी मेमोरियल ट्रस्ट के साबिक सरबरा मास्टर गुलाम मोहम्मद डार को साल 2025 के लिए गुलशन कल्चरल फोरम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर फोरम का फरियाद नामी रिसाला भी जारी किया गया। फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। बारामूला के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यौम महजूर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शायरी कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की जिंदगी और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर शायरी कश्मीर के लिखे कुछ गीत भी पेश किए गए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज फौज की 15वीं कोर के जीओसी आईजीपी कश्मीर और विक्टर फोर्स के जीओसी के साथ एक मीटिंग में जनूबी कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का जायजा लिया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मीटिंग में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के दीगर आला अफसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज के लिए दाखिले का अमल आज से बाजाबता तौर शुरू हो गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: आज से हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने सुबह 11 बजे लिंक jkadmissions.in लाइव कर दी है और अभी तक तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पे, और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27th। तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। जैसे ही सिंस ये प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेस रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें। तो उसमें एक टिकटिंग का सिस्टम है, एक टिकट जनरेट होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टिकट बैक एंड पे उसका रेजोल्यूशन होगा और वो उसका क्लोजर होगा, वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट है। और एक और बात है कि स्टूडेंट को अगर कोई भी चैलेंज आता है किसी भी डीडीपी सेंटर में ना जाए, नियर बाई कॉलेज में जाए, वहां से उसको फैसिलिटेशन होगी और उसको बताया जाएगा कि क्या उसको करना है। इसमें कोई ऑफ डे नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज है वही ऑफ है। जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, बाकी प्रोसेस ऑनलाइन है।
1: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में कल थियरानोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड के मौजू पर शुरू हुआ 2 रोजा मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम आज इख्ताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के इख्ताम पर इदारे के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: कैंसर को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स देने हमने एक प्रिवेंटिव क्लिनिक शुरू किया रिसेंटली, लेकिन दूसरे साइड से हमें ये भी देखना है कि लो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी हम शुरू करें। इसमें हमारा ज्यादा ध्यान देना है, रिसर्च करना है और पूरी कंट्री में ये सोचना है कैसे हम कैंसर का जो तेजी से बढ़ता है रोजाना, इसको कैसे कम करा जाएगा और कैसे लो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज हम इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज ये है कि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो हमें लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी है, घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन दे कि कैंसर के वजूहत क्या होते हैं, ताकि लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और कैंसर की ये जो तादाद है कम हो जाए।
1: शुभेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वो रियासत में बीजेपी की क्यादत वाली सरकार के पहले सरबरा होंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके साथ 5 काबिनी वुजरा ने भी हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबिन, कई मरकजी वुजरा और एनडीए हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वुजराए आला हल्फ बरदारी की तकरीब में शरीक हुए। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी लीडर और मुजाहिद आजादी शेख मोहम्मद मंसूर की 36वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की शनाख्त और भाईचारे के तहफ्फुज़ की कोशा हैं।

0: वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी अहदेदारों और कारकुन के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा से चसोटी में बादल फटने से मुतासर अफराद का एक वक्त मुलाकी हुआ, जिन्होंने 2005 में आए तबाहकुन सैलाब के नतीजे में लापता 33 अफराद के हक में डेथ सर्टिफिकेट इजरा न करने के तनाजुर में उन्हें दरपेश मुश्किल के हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। जम्मू में पार्टी तर्जमान रजनी सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यूटी में मनुष्यात की बिदत को ख़त्म करने में नाकाम हुई है। पार्टी की महिला मोर्चा ने आज त्रिकोटा नगर जम्मू में कायम पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी मामला से मुतलिक एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने बीजेपी के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा की सताइश की। इसी बीच महिला मोर्चा की सदर एडवोकेट नेहा महाजन ने आज जम्मू में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद जनाना कारखानादारों की हौसला अफजाई करना है। इधर जवाहरनगर श्रीनगर में आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की क्यादत में मगरबी बंगाल के नए वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब का जश्न मनाया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और गांधरबल जिले के पंचायत इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद अमीन शाह ने आज श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मामलों के अलावा सियाहत और रोजगार के मौकों के मुतालिक उनके साथ तबादला ख्याल किया। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुरहमान परा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिला के लिए अमृत प्रोग्राम के दूसरे मरहल के तहत 18 करोड़ रुपए मालियत के मंजूर किए गए पीने के पानी के प्रोजेक्ट को पसपुश डाल दिया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए गुज़श्ता बरस लागत के रकम की पहली किस्त वागुजार की गई, तहम अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीद पर्रा ने दावा किया है कि डीपीआर को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सौंपे जाने के बावजूद भी इसको प्लान में से निकाल दिया गया है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले की जानिब तवज्जा देने की अपील की है, जो पुलवामा के आवाम के लिए राहत का जरिया बन सकता है। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सैनतूती ने पुलिस अफसरों की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी के चाचा गुलाम हसन मसूदी इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और दीगर कई तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर रफीक मसूदी के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA के एहतमाम से आज पूरे मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी लोक अदालतों का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में भी यूटी के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली की निगरानी में लोक अदालतें मुनाक़िद हुई। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जेंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से मुनाक़िदा लोक अदालत का इफ्तिताह अथॉरिटी के सरपरस्त आला जस्टिस संजीव कुमार ने किया। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:34 और ग्रोब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सामी नादाब, आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। हमारे मुल्क में सबसे अहम इदारा हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जिस सियासी पार्टी की अक्सरियत होती है

0: की ही हुकूमत होती है। इस तरह से हुकूमत यानी गवर्नेंस की जिम्मेदारी इसी सियासी पार्टी की होती है। मगर हमारे इस पार्लियामेंट में एक और निज़ाम है जिसके जरिए पार्लियामेंट बराह रास्त अपने मेंबरान से अवामी मसाइल, उनके लिए शुरू की गई स्कीमों, उनके समाजी और माशी हालात के बारे में आगाही हासिल करती है और ये निज़ाम पार्लियामानी कमेटियों का है। ये कमेटियाँ हमारे मुल्क में जमहूरी तर्ज हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये कमेटियाँ मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती हैं और कानून साजी, मालियाती और इंतजामी अमूर की तफसीली जाँच में मदद करती हैं। गवर्नर्स के बारे में फीडबैक हासिल करने, नीज किसी खत्ते और अवामन्नास की राय हासिल करने के लिए इन कमेटियों के मेंबरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। माली उमूर से मुतल्लिक कमेटी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इस कमेटी ने यहाँ की माली और माशी मसाइल का जायजा लिया। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कमेटी मेंबरान से सियाहत, तवानाई और इलाकाई तरक्याती तरजीहात पर गुफ्तगू की। तवानाई शोबे के लिए इन मेंबरान ने बुनियादी ढांचे की मजबूती और जम्मू कश्मीर में काबिल तजदीद तवानाई में मुमकिन तरक्की के बारे में बातचीत की और अवामी नुमाइंदों के साथ अपने इजलास में इस कमेटी ने माशी तरक्की को और ज्यादा मुस्तहकम करने, दही राबता कनेक्टिविटी और हार्टिकल्चर और ज़राअत में मजीद इमदाद फराहम करने पर गौर खोज किया। इस तरह से कमेटी मेंबरान ने बराह रास्त जम्मू कश्मीर के मुआशी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इससे कबल घरेलू उमूर से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सरकारी व अवामी वफूद से बातचीत की और फीडबैक हासिल किया। उम्मीद की जा सकती है कि माली उमूर से मुतल्लिक ये कमेटी जम्मू कश्मीर की माली जरूरियात को मुल्क के बड़े ऐवान तक पहुँचाएगी ताकि दीगर मसाइल के अजाले के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद से जुड़े मसाइल भी हल हो सकें। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: नशे आकाशवाणी लेने शुंचिकतान सानी चुतोत क्या छा दुख काजत चुतोत क्या तंग फेत सुपा सरिंग डोल कर तंग सरिंग डोल मांग इसके सलकने जुंगलू रिक्सा नचात

0: dakhsang ija range gutak tang thapa gune salkane pot peluri sana ja changa je akashwani le nation chik tangin chandi chuchot kya tangs karma jip chu changa chadu kasata akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang urdinanga nasul sana ja
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में

0: वीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति

0: बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहाँ प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3

0: शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकान असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिजाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर RN रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, NDA और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में PW टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ

0: अब सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मर्तबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदू किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के दो दो अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएस

0: के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है, वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ngachya ka shwani lene shunjiktan sane chutsot kutang phechadu kasata nupchok silwang sajigrim sanatsa dringi digrim pulkan fariha yusuf